0: चॉइस एफएम 90.4 मेगाहर्ट्ज।
1: वाओ कति ह्यान्डसम, ओ माय गॉड, ल पार्नु पर्छ कि क्या हो।

0: गोर्खा जिल्लाकै विश्वासिलो सुन चाँदी पसल
1: नारायण सुन चाँदी पसल बैंक रोड बस पार्क गोर्खा। फोन नम्बर 064-24-670, मोबाइल नम्बर 98-460-56-238।